0: 香港电台新闻报道。
1: 晚上八点，向电台现在由高聚报道新闻。天文台晚上再度发出特别天气提示，指与冷风相关的雷雨区正影响珠江口以西地区，并预料会在未来一两小时逐渐靠近本港，呼吁市民留意天气变化。冷风相关的雷雨下午为本港多处带来超过30毫米的雨量，天文台一度发出黄色暴雨警告。政府本周二会公布第一季本地生产总值预估数字，财政司司长陈茂波预告会较去年第四季经修订的增长 4% 进一步加快，成为近五年来最强劲季度增长。他又说，五一黄金周首两天来港旅客按年增加 6%， 预测全年旅客有机会超出原先预估，预料带动全年与入境旅游相关总消费增加至超过2400亿元，按年增加 9.5%。 与此同时，本地消费市道已成明确的复苏趋势。陈茂波强调，地缘政局虽然带来一定挑战，但本港作为国际贸易枢纽，新的增长空间和新的发展机遇也不断涌现，国家“十五五”规划正全速推动构建现代化产业体系，香港以自身所长服务国家所需的发展过程中，正更好地发挥自身功能。俄罗斯克里姆林宫发言人佩斯科夫表示，如果乌克兰不愿意达成协议，俄罗斯会透过持续而且加强的军事行动令基辅当局接受，但透过和平协议实现目标，既是以谈判手段解决乌克兰问题，对俄方来说仍然是优先选项。佩斯科夫又说，虽然面临严重的能源危机，俄罗斯的利益仍然得到保障，乌克兰对俄罗斯石油基础设施的打击只会引发更大的石油短缺，并可能导致油价进一步上涨，而由于燃料价格上涨，俄罗斯企业和国库收入反而会增加。乌克兰总统泽连斯基同日表示，乌军再次对俄罗斯影子船队实施制裁，在新罗西斯克港口附近水域袭击两艘俄罗斯运油轮，这些运油轮已经无法使用。美国国务卿卢比奥据报将于本周访问意大利和梵蒂冈。法新社引述意大利政府消息人士报道，本身是天主教徒的卢比奥预计将会与梵蒂冈国务卿帕罗林及意大利外长塔亚尼会晤。意大利传媒就指，卢比奥也会在访问期间与意大利防长克罗塞托会面。美国与梵蒂冈的关系因为美国总统特朗普批评教宗梁十四世的反战言论而恶化。本身是特朗普欧洲亲密盟友的意大利总理梅洛尼也因为帮教宗辩护而被特朗普批评缺乏勇气。意大利传媒形容，卢比奥这次访问旨在缓和两国关系。天气方面，与冷风相关的雷雨正影响广东沿岸及南海北部，而冷风随后的东北季候风正逐渐影响广东。本港地区今晚及明天的天气预测，大致多云，时而有骤雨及几阵狂风雷暴，初时部分地区雨势较大，明天雨势逐渐减弱，天气稍凉，气温介乎21至25度，吹和缓至清静北至东北风。展望星期二仍然较凉，即时而有骤雨，随后一两天骤雨减少，气温逐步回升，天色较为明朗。现时路德室外气温23度，相对湿度94%，请注意雷暴警告 有效时间到晚上十点。向联台新闻报道完毕。
0: 听 AM 六二一，
2: 听生活，听精彩。
0: 听香港电台普通话台
2: AM 六二一，香港电台普通话台，谱出生活精彩。
0: 追求极致，生活每个细节都想又快又方便，所以大家都用转数快。缴付账单或在商店购物，扫转数快二维码付款，真快。手机网购用即时连接转数快的支付应用程式付款，爽快。在日常生活以外，现在更转出香港，在泰国扫 Prompt Pay 商户二维码，就能即时跨境付款，畅快。随时随地随你转，转数快。
3: 由而家到晚上十一点是社区参与广播时段，节目由参与 CIBS 社区参与广播服务的社区团体或人士制作。
4: 从现在到晚上十一点是社区参与广播时段，节目由参与 CIBS 社区参与广播服务的社区团体或人士制作。
5: From now to 11 p.m., you'll be listening to programs made by community producers from the CIBS Community Involvement Broadcasting Service.
6: 함부로 समाजको हर छोरीहरुमा समर्पित हङकङमा रहेका अल्पसंख्यक समुदायका छोरीहरुको अनेकौं आभासहरु समेटिएको एउटा मीठो रेडियो कार्यक्रम हाम्रा छोरीहरु Our Daughters 2.0, जहाँ हामी समेट्नेछौँ उहाँहरूको फरक फरक पृष्ठभूमिमा बाँच्नुभएका अनुभवहरू, जसले शिक्षा, स्वास्थ्य, पत्रकारिता, उद्यम, खेलकुददेखि आजको आधुनिक आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससम्मको बृहत योगदान दिनुभएका प्रेरणादायी 13 कथाहरू सुन्नेछौँ। रेडियो कार्यक्रम हाम्रा छोरीहरू Our Daughters 2.0 यस कार्यक्रमको उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याइरहेका महिलाहरूको प्रेरणादायी कथा मार्फत समाजमा सकारात्मक सोच र समानताको सन्देश दिनु हो।
7: Dedicated to every daughter of our ethnically diverse community, a radio program celebrating the voices and journeys of daughters from Hong Kong's ethnically diverse community. Hamra Choriharu, Our Daughters 2.0. Hamra Choriharu, Our Daughters 2.0 aims to inspire positivity and promote equality in society by sharing the powerful stories of women who are shaping a better future for all.
6: श्रोता मित्रहरू नमस्कार। छोरीहरूको साहस, सपना र उपलब्धिहरूले समाजलाई समानता, सम्भावना र उज्यालोतर्फ डोराउँछ भन्ने विशेष अनुभूति सहित तयार भएको रेडियो कार्यक्रम Our Daughters 2.0 को पाँचौं श्रृंखला स्वागत गर्दछु। म कार्यक्रम प्रस्तोता मिरिना राई। यस कार्यक्रमलाई कम्युनिटी इन्भल्भमेन्ट ब्रडकास्टिङ सर्भिस CIBS द्वारा उत्पादन गरिएको हो। यस कार्यक्रमले महिला नेतृत्वको उजागर गर्दै छोरीहरूको योगदान, सम्मान र भविष्यको सम्भावना बारे समाजमा जागरूकता फैलाउने उद्देश्य